ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: गजल पेशे खिदमत है हसरत तुम्हानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सब कलमा

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमान सामी नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौसम जो है वो ठंडा होता जा रहा है, पत्ते गिर गए हैं और बादल भी आ गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे थिंक टैंक सैयद तुकीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आज क्या लेकर आए हैं आप?
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राजा फूल साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिस्टर नाज़रीन को सबको अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि इस वक्त डेनमार्क का मौसम तो बहुत सर्द हो रहा है, बल्कि सर्दियों की तरफ, सर्दियों की आमद कह सकते हैं आप। टेम्परेचर जो है वो 17-19 के दरमियान है, और अगर थोड़ी सी धूप निकला है तो अब आप 20 चला जाता है, लेकिन फिर भी मौसम जो है ये अब जैकेट्स वगैरह पहनने का मौसम आ गया है। और खसूसी तौर पे जो हमारे थोड़े से उम्र रसीदा लोग हैं, मेरी उम्र के लोग हैं, इनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। और फिर यहाँ पे कुछ अजब किस्म के वायरस भी आ गए हैं जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। और फिर आपको पता है कि डेंगू वायरस जो पाकिस्तान में अमूमन सुनने में आता है और देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों को डेंगू हो गया है, फ्रांस और दूसरे इलाकों में काफी डेंगू के जो है वो वाकयात हुए हैं, जिससे ये भी पढ़ने में आया कि कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। ये डेंगू जो मच्छर के जरिए फैलता है, और ये मच्छर जो है वो यूरोप में आ चुका है। डेंगू मच्छर जो होता है, डेंगू वायरस फैलाता है, तो इसी तरीके से हमें एहतियात करना चाहिए। दूसरा ये है कि 1 अक्टूबर से हर जो पेंशनर है या जो फॉर्चुन पेंशनर है या वो जो कोई बड़ी क्रिटिकल किस्म

हो जाऊंगा, लेकिन मैं शुरू से ही कोरोना वायरस जो है इसके इंजेक्शन लगा रहा हूँ। मैं मुझ में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई, कोई इसके असरात नहीं हुए, बल्कि मुझे क्योंकि मैं टैक्सी चलाता था तो मुझे बाज़ औक़ात वायरस ये जो कोरोना वायरस है ये लग जाता था, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन या 24 आवर से ज्यादा ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन तक मुझे थोड़ा सा महसूस होता था, उसके बाद मुझे अपनी इम्यूनिटी की तरफ से जो मेरे अंदर वो ताकत होती थी उसकी वजह से मैं सर्वाइव कर जाता था। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा कि आप जरूर लगवाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने सबको जो है वो मेल भी भेज दिया है, ई बॉक्स में भी आ गया, आप जरूर एहतियात करें, अपने डॉक्टर से पूछें। फिर जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो सबसे जरूरी इस वक्त ये बात है कि आफ्टर ऑल की जो ये जो सर्दियों की छुट्टियां हैं जो जिसको हम कहते हैं पतझड़ का जमाना, मौसम खजान जिसको उर्दू में कहा जाता है, वो अब अक्टूबर में उसकी छुट्टियां होने वाली हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेवल करेंगे, सफर करेंगे। तो मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि मैं गवर्नमेंट के जो असूल है उसकी तरफ से आपको बता रहा हूँ जो कानून है। एक, अगर आप पेंशनर हैं, 40 पेंशनर हैं, बिफोर टाइम पेंशन आपने ली हुई है, तो आप अपने उड पिटेलिंग डेनमार्क को जो है जो आपका पेंशन का आधार है वो सब का है उसको कहते हैं उड पिटेलिंग डेनमार्क, आप उनको जरूर इन्फॉर्म करें। वो आपको एक जब आप उनको डेट लिखाएंगे कि हम इस डेट से इस डेट के लिए हम फलानी जगह सफर करके जा रहे हैं, तो वो आपको ई बॉक्स में आपकी छुट्टियों का जो है ऑफिशियल वो भेज देंगे कि इस बंदे ये बंदा जो है ये ऑफिशियल छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहा है। उसके ऊपर मुल्क का नाम नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन वो आपको ये बताएंगे कि आपको कितना अरसा तक बाहर रहने की, इस मुल्क से बाहर रहने की इजाजत है और किस तरीके से। एक पेंशनर जो है जब वो बता के जाता है, जैसे मैं फुल पेंशनर हूं तो मैं मुझे उन्होंने लिख के भेजा था, मैंने उनको कहा था कि मैं 1 माह के लिए जा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा था कि तुम्हें 6 माह तक बाहर रहने की इजाजत है विद पेंशन, यहाँ की पेंशन, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है तो वो उनपे ट्रेनिंग डेनमार्क को फिर बताना पड़ेगा और उसका फैसला वो करेंगे। और ये छुट्टियां जो है ये आपके लिए लीगल है, आपके पास एक बवीस आ जाता है अगर आपको कम्यून पूछती है या कोई पूछता है। इसके अलावा आप जो है बाउ सर्विस जो आपके लोकल बाउ सर्विस है आप उसको मेल कर दे, टेलीफोन कर दे। आप ये ना कहेंगे कि मैंने फ्राइडे नाइट को सफर किया तो कम्यून बंद थी, या सैटरडे या संडे को किया तो कम्यून बंद थी, नहीं, आप उनको मेल कर सकते हैं, आप उनको टेलीफोन कर सकते हैं, अगर वो टेलीफोन टाइम है तो वो सुनेंगे, नहीं तो मेल पे आप उनको मैसेज कर दें। तो क्योंकि जिस अदारे से आप पैसे ले रहे हैं उनको तो उर्बे ट्रेनिंग डेनमार्क को तो पता है कि आप राइज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सर्विस को भी आप बता के जाएं। इसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप काम से छुट्टियों पे जा रहे हैं, ये याद रखें कि छुट्टियां तो आपका लीगल हक है, लेकिन आपका ये लीगल हक है कि जब आप इस मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो वहां पे प्रोटेक्शन देनी, वहां पे कानूनी तौर पे आपकी मदद करना इस गवर्नमेंट का, इस मुल्क का फर्ज है। आपके पास येलो कार्ड हो, आपके पास परमानेंट अपॉर्चुनिटी लेटर हो, लेकिन आपके पास अगर खुदा ना हास्ता नेशनलिटी है, मेक नो डिफरेंस, आपने अपने जो आपकी बाउ सर्विस है उसको आपने इन्फॉर्म करना है कि हम छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर खुदा ना खासा वहां पे जाकर आपसे कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, तो वो आपकी पूरी एम्बेसीज वहां की और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क जो है वो आपकी मदद करते हैं। ये लीगलाइज चीजें हैं और ये आपको करते हैं। अब पाकिस्तान जो है वहां पे राइजे फुसिकिंग जो है वो कवर नहीं करती, वो राइजे फुसिकिंग इसलिए कवर नहीं करती कि आपका पूरा पाकिस्तान जो है वो रेड जोन और ऑरेंज जोन के अंदर है, और ये इस वजह से है कि कैटेगरी 5

0: उस पर लागू होती है। हालांकि ग्रे ग्रे जोन से पाकिस्तान निकल चुका है, और ग्रे जोन से निकलने के बाद ये हमारी एम्बेसीज और हमारे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस थी इनकी वजह से यहाँ पे ये केस पुट अप नहीं हुआ, और इंशाल्लाह ताला इस पे आवाज उठाई जा रही है। कम्युनिटी के चेयरमैन भी हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये आगे लेके जाएंगे। लेकिन आप अपनी छुट्टियों पे अपनी इतला करके जाएं, ताकि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी मुल्क में आ जाती है। एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान चले जाते हैं, आप बता कर नहीं जाते, और वहां पे आपको फ्लाइट्स नहीं मिलती, मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से आपको फ्लाइट्स नहीं मिलती, आप काम पे नहीं आ सकते, आप फंस गए हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है डेनमार्क के अंदर। लिहाजा जब आप बता कर जाएंगे तो डेनमार्क से वहां जाने पे ये गवर्नमेंट जो है, एम्बेसी जो है, वो आपकी फुली मदद करेगी, बजाय आप वहां जाके ऑल फॉर बके और ये कह जो ओ जी स्कूल मुझे तो समझ नहीं आई, मैं कानून नहीं। हम आपको बता रहे हैं और इस प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे लीगल बताकर जाना आपका राइट्स है, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। और अगर आप कम्यून से सोशल ले रहे हैं या आप आबेसलूस हैं, फिर भी आपका राइट है कि आप छुट्टियां ले सकते हैं, और आप उनको बताएं, वो आपको छुट्टियां देंगे, और उन छुट्टियों में आपको बकायदा पैसे मिलेंगे। जी राजा साहब,
1: शाह साहब, आपने तो सारी मालूमात दे दी। तो शाह साहब, ये जो हमारे सिटी काउंसिलर साहिबान होते हैं जिस जिस कम्यून में बैठे होते हैं, मैं कोपेनहेगन की बात करूंगा, फ्रेडस्पिया की बात करूंगा, तो ये लोग क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन देते? जब ये इलेक्शन आते हैं तो ये माशाल्लाह सारे एक्टिव होते हैं, सब जो पाकिस्तानी नसाद जो डैनिश भी हैं और उनके पास परमानेंट अपर छलालसा भी है, ये सारे लोग ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं, क्या बात है शाह जी?
0: राया साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। आप रेडियो पे ले लेते हैं हम लोगों को आपके थ्रू, आप हमें मुझे कहते हैं मैं, और हम एक दो तो बंदे हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हैं। लेकिन अगर लोग सुनना नहीं चाहते, लोग सवाल जवाब नहीं करते, लोग आपको लिखते नहीं है कि हमें ये कानून के हमारी रहनमाई फरमाए, तो यहाँ पे इतने ज्यादा फैसिलिटीज हैं इस मुल्क के अंदर कि जिनको हम एंजॉय कर सकते हैं, जिनको हम सही मायने में उनको लेके चल सकते हैं। बाकी रहा ये काउंसलर्स और ये जो ये लोग एक पोस्टर हैं, ये बस आते हैं कि हमें हमें हमारी तस्वीर आ गई, हमारा पोस्टर लग गया कि हम काउंसलर बन के हमें हम जी बहुत हायर एजुकेटेड हैं। हमने ठीक है जी, आपको मुबारक हो, आप बहुत हायर एजुकेटेड हैं, मेक नो डिफरेंट, अच्छी बात है, आप और हायर एजुकेटेड हो। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये लोगों को आकर आप खुद दें कि आपकी कम्यूनों के, क्योंकि हम बारहा पिछले 8-9 साल से आपके रेडियो पे ये बकायदा बता रहे हैं लोगों को कि हर कम्यून के अपने अपने जो आवाम है, आप जो उस इलाके में रहती है उसके लिए डिफरेंट कानून है, उसके लिए डिफरेंट चीजें बनाई हुई है, और आप उनको कैसे चलाते हैं, फिर ये इनका काम है आकर बताना। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है कम्यून के अंदर और आपकी रसाई वहां तक नहीं हो सकती, तो फिर आप इन काउंसलर से बात कर सकते हैं कि भाई प्लीज आप हमारी मदद करें। अब काउंसलर जो हैं वो अपना काम करते हैं, प्राइवेट जो जॉब वगैरह करते हैं, उसके बाद वो जाते हैं 5-10 मिनट के लिए कोई प्रोग्राम, कोई अगर कोई इनकी अपनी जो छोटी सी पार्लियामेंट होती है उसके अंदर कोई बहस मुबासा, तो ये खुद पूरी वो चीजें पढ़ के नहीं गए होते, वो बजट को इनका पता नहीं होता, ये जाते हैं और मुंह उठा के आ जाते हैं, कहते हैं जी हमने बस ये हाँ हाँ कर दी। तो हालांकि जो पार्टी के चुने हुए लोग होते हैं वहां पर बोलते हैं और ये बस साइन करके आ जाते हैं, तो ये आवाम को क्या बताएंगे? ये तो फोटो सेशन के लिए आते हैं और
1: तो
0: फोटो
1: शाह
0: सेशन
1: साहब,
0: करा
1: एक
0: के
1: एनवायरनमेंट होती है कि अगर आपने यहाँ डेनमार्क की सियासत ही नहीं करनी, لوکل جو سیاست ہوتی ہے بڑی پاورفل سیاست ہوتی ہے، یہیں لوکل جو ہیں لیڈر بنتے ہیں، یہیں سے پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہیں، لیکن جب ہمارا انٹرسٹ اس طرح کا نہ ہو، ہمارا انٹرسٹ جو ہے پیچھے کی طرف ہو، تو ہم جو ہے وہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں، وہ انہیں ظاہر ہے کہ ایک جگہ چاہیے، رہنے کے لیے جگہ چاہیے، گاڑیاں چاہیے، کھانا مفت ہوتا ہے، تو شاہ صاحب اس سے تو بڑی کوئی عیاشی نہیں ہے، جب کہ ہمارے بچے یہاں ہیں، انہیں یہاں پڑھتے ہیں، ان اسکولوں میں جاتے ہیں، یہاں ٹیکس دیتے ہیں، انہیں تو یہاں کی سیاست کی طرف توجہ دینی چاہیے۔
0: راجہ صاحب آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے، ان سیاستدانوں کو میں کیا کروں؟ میں تو ان کو دعوت دیتا ہوں، آؤ میرا سر پھاڑو، مجھے مارو تاکہ میں بولنا چھوڑ دوں، میرے دانت دارا توڑو تاکہ میں بولنا چھوڑ دوں، میں بوڑھا آدمی ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ آئے کہ اب جوان لوگ مجھے مار۔ دیکھیں پچھلے 25-30 سال سے جب سے انوادا کے جو قانون جو ہیں سخت ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ ود فیملی جو ہیں وہ گرین کارڈ پہ ڈاکٹرز انجینئرز کی اور بڑے بڑے سائنٹسٹ کی شکل میں وہ ڈنمارک میں آ رہے ہیں، لیکن ہمارے جو بچے ہیں نہ ہم اپنے کسی رشتہ دار کو بلا سکتے ہیں، بلڈ ریلیشنز کو یہاں بلا سکتے ہیں ڈنمارک کے اندر وزٹ کرنے کے لیے، نہ ہی ہم اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو بلڈر کر رہے ہیں اس کی وجوہات جو ہے یہ ہمارے کونسلر حضرات ہیں، کیونکہ ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہماری بلادری۔ ہم سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مساجد جو ہے وہ فرقوں کی علامت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ بلادری ازم جو ہے وہ بڑا سٹرانگ ہے، اور گاؤں کے اندر اور جی یہ فلانے پردہ استغفار، اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے، میں اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں اور ان لوگوں سے معذرت کرتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں کہ یہ فلانا کمی ہے، فلانا یہ فلانے پردہ ہے، یہ فلانا فلانے کا، میں بڑا بڑا چودھری ہوں، وہاں پیچھے چودھری صاحب کے پاس اس وقت مجھے بھی اس طرح ہی نہ ہوتا ہو، لیکن پیسہ جب آ جاتا ہے تو پھر سب چودھری بن جاتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ ہیومن رائٹس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسلام میں سب سے بڑی اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ ہم سب برابر ہیں اور سب کلمہ گو ہیں، ہمیں کسی کا یہ کام نہیں دیکھنا چاہیے۔
1: یہاں تعلیم مفت ہے، ہر چیز جو ہے وہ پڑھنے یونیورسٹی تک کی تعلیم مفت ہے، تو کس طرح بچوں کو جو ہے، بچے پڑھتے بھی ہیں جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا نام ہے بچوں کا، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، گو کے کسی بھی محکمے چلے جائیں، ہمارے بچے بڑے قابل ہیں، غیر ملکی بچے بڑے قابل ہیں۔ شاہ صاحب کون سی گائیڈ لائن دی جائے کہ جب 70-71 والے لوگ آج وہی کچھ بنانا چاہتے ہیں جو 70-71 میں آئے تھے، ہماری طرح بنو۔
0: جب تک ہم اپنے کلمہ کو، بھائی کو اپنے برابر کا سٹیٹس نہیں دیں گے، یہ سب سے بڑی گائیڈ لائن ہے۔ جب تک ہم کسی کو کمی اور یہ کہ یہ فلانی نسل کا، یہ فلانی نسل کا، جب تک ہم اس چیز میں، ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ شرابی ہے، نشہ کرتا ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہے تو ایک وہ اکیلا سبجیکٹ ہے، اس پہ آپ دور ہیں، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، یا کوئی پیچھے کوئی بےچارا جوتیاں سی رہا تھا یا کپڑے سی رہا تھا، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ درزی ہے یا کیا تھا یا نائی تھا، اس کو اس کے پیشے پہ مت جائیں، یہ دیکھیں کہ اس کے اندر خاندان کون سا ہے، اس کا خون کیا ہے، اس کے دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ آپ یہ اصحاب لگائیں کہ میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے گجرات شہر کے اندر، جس محلے سے میں آیا ہوں وہاں کے بہت بڑے لوگ ایسے تھے جو کہ ٹوٹے ہوئے مکانوں میں رہتے تھے، لیکن بعد میں ان کے بچوں نے ایجوکیشن حاصل کی اور انہوں نے ٹاپ میں پاکستان کے وہ لوگوں میں شامل ہوئے۔ اسی طریقے سے میں نے بہت سارے اپنے دوستوں کو دیکھا جو میری کلاس میں میرے ساتھ پڑھتے تھے، ان میں سے میجورٹی جو ہے انہوں نے بڑی بڑی جابیں کی۔ تو کبھی کسی کی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا تھا، میرا باپ جو تھا میرا باپ تھا، میرا دادا جو تھا وہ ان کی اپنی پوزیشن تھی، میں نے انجینئرنگ پڑھ کے میں نے کیا کیا، میں نے ڈنمارک کے اندر ساری عمر ٹیکسی چلائی اور سیاست کی اور لوگوں سے باتیں کی۔
1: شاہ صاحب ٹیکسی کا آپ کو بہت تجربہ ہے، یہ جو ٹیکسی کے معاملات آ لوگے، لوگ بڑے خوش ہیں، ان کو جو نئی ٹیکسی برانچ چلی ہے کھلی ہے تو لوگ پرماننٹ جاب کرتے ہیں، مہینے کے مہینے ان کو تنخواہ آ جاتی ہے، اگر خود بھی مال اپنی ٹیکسی ہے تو پھر بھی وہ اپنی 2-3 گھنٹے چلا لیتے ہیں۔ تو شاہ صاحب یہ جاب اچھی نہیں ہے؟
0: یہ بالکل جاب کرنا ये बिल्कुल सही है। मैं आपको ये बता दूं कि अब क्रिसमस के बाद, दिसंबर के बाद, जनवरी फरवरी सबको पता है कि ये सबसे बुरे तीन महीने होते हैं एक कैब ड्राइवर के लिए, एक लोगों के पास, क्योंकि दिसंबर का महीना वो क्रिसमस मनाने के लिए और न्यू ईयर मनाने के लिए वो इंतहा से ज्यादा अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है उसको यूज कर चुके हैं, उसको इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो फिर लोग जो है वो इन पे सफर नहीं करते, कोई मजबूरी के आलम में हो तो वो सफर करता है, तो वहां पे इनकम जो है कम हो जाती है और ये अपने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो नई टैक्सी आई है, जो नया सिलसिला शुरू हुआ है कि आप 29-30 हजार आपको वेज मिल रही है उसमें से आप टैक्स दे, और फिर आपको कंपनी जो है वो आपको एज ए ड्राइवर जो है वो रख रही है और आप गाड़ी चला रहे हैं और आप अपनी जो आपको वो टूर देंगे उस पर आपने टूर लेने हैं, इसमें आपको कोई ये प्रेशराइज नहीं कर रहा, आपको जहनी तौर पे ये नहीं कह रहा कि आज पूरी दिन में से आपने 1,000 करोड़ बनाया, वो ये तो आप तो आपको तो अपनी तनख्वाह से है और तनख्वाह आपको मिल रही है और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 7.5 घंटे जो है आपने काम कर रहे हैं उसके अंदर आपके जो है वो लंच ब्रेक वगैरह भी सब कुछ है, तो ये चीजें जो है ये ज्यादा महफूज है क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे टैक्सी बिरादरान का सबसे बड़ा खुद कसूर है। जब हमने इनको 2017 में ये कहना शुरू कर दिया था कि खुदा रा इस चीज को आप आगे लेके ना जाए, इसको यहीं पर स्टॉप कर दे और अपनी वॉनमैन जो है इसको बचाए, लेकिन इन्होंने क्या किया उस वक्त, इन्होंने कहा कि ये जो रेडियो आपकी आवाज है इसके ऊपर शाह साहब बैठ के झूठ बोलते हैं और ये बस ऐसे ही बेकार करते हैं और हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई हमारी वॉनमैनशिप छीन नहीं सकता, हम लोग महफूज हैं, हम लोग महफूज हैं। तो आज ये है कि कोई भी वॉनमैन नहीं है, कोई भी वॉनमैन जो है उसका स्टेटस जो है वो डेनिश जबान के अंदर वो एक आम गाड़ी का मालिक है, आम गाड़ी का जिसको इजाजत दी गई है टैक्सी चलाने की, जिस तरह ऊबर जो है वो इजाजत देती है कि भाई आप जो है आपके पास एक आम गाड़ी है तो आए हम आपको उसको एज ए टैक्सी चलाने की इजाजत देते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी ये की है और ये इसलिए उन्होंने ओपन कर दिया हर चीज और इससे लोगों को।
1: शाह साहब एक बात सुनने में आ रही है, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है कि मियां मुनीर साहब जो हैं वो फोरमैन रहे टेक्सा ब्रांच के, तो वो सुना है कि वो भी अपनी जो है वो गाड़ी वापस करने जा रहे हैं।
0: जी बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां वापस कर दी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि गाड़ी के जो खर्चे हैं 30-35 हजार करोड़ का जो खर्चा है मंथली गाड़ी का वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जब आप इतनी मेहनत करें और अपनी अपनी तनख्वाह भी ना निकाल सकते हो तो कोई भी आदमी जो है जो सेंसेबल आदमी है वो इस चीज को नहीं देखेगा। और दूसरा ये चीज है कि आप देखें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख की मिलियन मिलियन करोड़ की गाड़ियां थी, अब उनकी रीसेल वैल्यू कोई नहीं रही क्योंकि यहाँ पे तो अब नई गाड़ियां जो है अब आपने आप देखें कि चाइना ने मैं इसी हफ्ते में गया हुआ था चाइनीज गाड़ियां देख रहे, उन्होंने स्पोर्ट मॉडल और इतनी इतनी खूबसूरत गाड़ियां निकाल दी है जो 3 लाख से शुरू हो रही है इलेक्ट्रॉनिक और 3 लाख से शुरू हो रही है और उनके अंदर हर किस्म की फैसिलिटीज है, हर एक चीज है। तो ये चीजें जो है ये होश ज्यादा से ज्यादा सस्ती गाड़ियां आ रही है, लाख तक करोड़ में आप गाड़ियां छोटी से छोटी जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आप ले सकते हैं, तो ये गाड़ियां जो है अब सड़कों पे आ गई है और लोग अगर लेते हैं गाड़ियां, मेरे अपने बच्चों ने रखी हुई है, तो ये गाड़ी जब पुरानी हो जाती है तो फिर बैटरी जो है जब उसकी गारंटी खत्म हो जाती है तो फिर सबसे महंगी जो चीज है वो 1 लाख से ऊपर की जो बैटरी है वो जो है वो प्रॉब्लम करती है बंदे को, क्योंकि जब आप कारोबारी नहीं करते, आपके पास इतना बड़ा कारोबार नहीं है, आपके पास थोड़ा सा दो 1 लाख करोड़ से ऊपर की रकम जो है वो बैंक आपको कभी भी नहीं देगा अगर आपके पास सरमाया है
1: तो। शाह साहब इस पे गवर्नमेंट मदद नहीं करती, सब्सिडी नहीं देती?
0: कोई मदद दे जी, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जो है वो वसूल करने के लिए बैठी हुई है, गवर्नमेंट जो है वो आपको चेक में देती है, गवर्नमेंट जो
1: तो
0: है
1: शाह साहब शहर में पार्किंग ही नहीं है, लोग घूमते रहते हैं, जब इतनी गाड़ियां आ गई हैं कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो कितनी बड़ी लेनी है कितनी छोटी लेनी है, शहर के अंदर स्पीड जो है वो 30-40 तक हो गई है, तो गाड़ी की बड़ी गाड़ी की कोई पाबंदी नहीं, हर गाड़ी का मीटर 220-250 तक चला जाता है, तो शाह साहब ये पाबंदियां क्यों नहीं लगती?
0: देखिए लग रही है, सारा कुछ हो रहा है, अब पहले 1 करोड़ की होती थी इनकी को वोल्टेज इलेक्ट्रिक गाड़ी की, अब डेली अखबारों में आ रहा है कि 4.5 से जो है 5 तक चली गई है, और दिन के मुख्तलिफ औकात में जो बिजली है वो महंगी हो जाती है फिर सस्ती, ये एक एक किस्म की इन्होंने लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान की तरह इन्होंने भी ये कर लिया कि कमाई कराने करने का तरीका क्या है, पेट्रोल को महंगा कर दो, इलेक्ट्रिक को महंगा कर दो, कुछ चीजों में आप लोगों को छूट दे दो, फिर दूसरी जगह से आप पैसे पैसे जो है वो गवर्नमेंट अपने ले लेती है, तो ये जो मसाइल है गवर्नमेंट अपने अपने
1: टैक्स का निजाम है, फिर सहूलियात भी मिलती है, देख लेना सोशल की सहूलियात होगी, इसी तरह बूढ़ों की सहूलियात होगी, गाड़ियों की सहूलियात होगी, अस्पतालों की सहूलियात होगी, शाह साहब ये तो टैक्स से निजाम चलता है।
0: देखिए जी टैक्स का निजाम जो है वो बड़ा ही गंभीर और गलत टैक्स सिस्टम है, यहाँ पे जो अरबपति हैं जो करोड़पति हैं अगर वो फ्रॉड करने लगे तो उनको करोड़ों अरबों का फ्रॉड कर जाते हैं और उनको टैक्स वाले नहीं पकड़ सकते,
1: फिर जो सजा भी देता है इससे बच को नहीं सकते।
0: नहीं वो सजा जो है ज्यादातर उन लोगों को मिलती है जो थोड़े थोड़े पैसे की का हो जाता है, जो कोई मजदूरी कर रहा है अगर उसका,
1: तो ऑन द होल इसका हल बताएं, आपके पास 80-50 साल का तजुर्बा है तो हमारे पास 2 मिनट है, हल बताएं
0: टैक्सी का
1: जो सारा निजाम इसका हल बताएं हमें क्या करना चाहिए।
0: सबका हल ये है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको राइट हासिल है कि आप हर साल अपने कम्यून के अंदर जाएं, आप उनको कहें कि जी मेरा कोबरा जो है इसको कोबरा कहते हैं, आप मेरा जो है फाइनल जितना मैंने टैक्स दिया है वह आप आवेश की वह हो वह आप नॉर्मल टैक्स पेयर है तो आप वो अपना रिकॉर्ड निकलवाए और उसको जो है आप जो है तो उस पर देख सकते हैं कि आपने कितना टैक्स दिया है या आपके आवेश जीवन ने कितना आपका टैक्स दिया है, क्या वो जायज है, क्या आपको इस साल जो है टैक्स किसका देना है, उस पर आप टैक्स ऑफिसर से बात कर सकते हैं, और अगर आप आवेश जीवन है तो आप ये देख सकते हैं कि क्या जायज टैक्स आपने पे किया है या कोई नाजायज आपसे लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 40 साल से ऊपर जो टैक्स का मिनिस्टर है इस वक्त उन्होंने खुद ये बयान दिए हैं और इसी तरीके से लिबरल अलायंस और दूसरों ने कि बड़ा शोर डाला है इस बात पे कि टैक्स के अंदर बहुत सारे होल्स हैं और बहुत सारे लोगों को के कारोबार जो है वो छीने गए हैं, बाद लोगों ने बहुत ज्यादा
1: तो शासन ये जो टैक्स का निजाम जो करते हैं जिसे रिवीसा कहते हैं तो ये 1 महीने के कितने चार्जेस लेते हैं?
0: देखे जी रिवीसर भी दो तीन किस्म के हैं, एक रिवीसर है जो मैट्रिक करता है या फर्स्ट ईयर अपना जिमनेजियम करता है और उसके बाद वो रिवीसर बन जाता है कोर्स करके, एक जो सही रिवीसर है वो होता है अपना स्टेट रिवीसर, और स्टेट रिवीसर जो है वो इतने महंगे होते हैं, वो करते हैं बड़ी बड़ी फर्मों के लिए काम, और हमारा आम आदमी जो है वो स्टेट रिवीसर के पास जाने को सोचता ही नहीं, हम जितने भी रिवीसरों के पास जाते हैं वो असल में रिवीसर नहीं होते, वो झूठ बोल रहे होते हैं, वो होते हैं बुक करने वाले, यानी जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं जी मुंशी के हमारे मुंशी ने ये हिसाब किताब लिख दिया, वो माजरत के साथ वो असल में मुंशी होते हैं, उनके पास इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो आकर वो ये कर सकते हैं काम कि वो टैक्स को लिख सकते हैं कि भाई मुझे जो
1: तो शाह साहब एक होता है ना कभी कभी इश्तियार भी हमारी नजरों से गुजरता है कि आपको एक जो रिवीसर की जरूरत है हम 600 करोने में 500 करोने में आपका महीने का हिसाब किताब किया करेंगे,
0: ये गलत चीजें हैं, इससे इंसान धोखा खाता है, वो एक किस्म के मुंशी होते हैं और माजरत के साथ मैं इनसे, क्योंकि ये हकीकत है डेनिश कानून के अंदर, मैं खुद इस कानून को जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। जो स्टेट रिव्यूसर होता है वो असल में वो बंदा होता है कि जो टैक्स वालों को लिखता है कि जो चीजें मेरे सामने मेरे क्लाइंट ने रखी हैं, जो पेपर उसने मुझे सबूत दिया है, उसके मुताबिक जो कुछ मैं लिख रहा हूँ और ये मेरे हाथ से निकल के गया है, इसको मैं हल्फन जो है वो मैं इसको सही समझता हूँ। लेकिन जो छोटे रिव्यूसर होते हैं वो लिख देते हैं जी कि ये चीजें जो तो मुझे उसने प्रोवाइड की थी वो मैंने लिख दी, वो इसको अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता, वो कहता है कि जो मेरे क्लाइंट ने मुझे दिया वो मैंने लिख के आगे कर दिया। लेकिन जो पढ़ा लिखा स्टेट रिव्यूसर है वो कहेगा कि नहीं, मैं जो तो गलत पेपर है वो मैं कभी भी नहीं लिखूंगा, मैं उन चीजों को लिखूंगा जिनके पास तुम मुझे सबूत के तौर पे दोगे और जो पेपर होगा मटेरियल वर्क
1: तो
0: होगा
1: शाह साहब इससे
0: उसको
1: साबित हुआ कि
0: करूंगा।
1: कानून का एहतराम करना चाहिए, कोई मुश्किलात नहीं आती।
0: बिल्कुल, आप कानून का एहतराम करें, फिर कानून भी जो है अगर उसके अंदर कोई ऐसी गलती आ जाती है तो वो कानून जो है वो रिवर्स होकर आपकी इमदाद को भी खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को ये कहते हैं कि देखो ये जो कानून बना रहे हैं पार्लियामेंट में, आप इसकी तरफ ना जाएं, बल्कि आप उसको देखें जो आईन है, आईन के खिलाफ अगर ये कानून बने हुए हैं तो आप उसको कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप ऐसी वायलेशन ना करें कि जिससे आप कानून की गिरफ्त में आ जाएं, और अगर आप खुदा ना खास्ता आ गए हैं और ये झूठा ब्लेम है तो फिर आप आपको उसकी
1: कानून के मुताबिक
0: इंसाफ
1: सजा
0: की भी
1: मिलेगी। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, आपने मालूमात दी। सामान्य नाजरीन, हमारा किसे मुतफिक होना जरूरी है, लेकिन आप कोशिश करें कि जिस तरह वो फरमा रहे थे कानून कायदे का एहतराम करें तो मुश्किलात आपके सामने नहीं आएंगी। अगर कानून से कहीं ऐसी पैसी छोटी मोटी बात हो जाती है तो वो रिवर्स भी हो जाती है, वो आपको सबका बकाया जात भी मिल जाते हैं। तो लिहाजा सबसे बेहतर यही है कानून का एहतराम करें।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
3: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरानी इस्लाम, दुरूसे साबका में सीरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में हमने कुछ बातें अर्ज की। कुछ जिक्र तो था जजीरा अरब के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस जजीरा अरब का क्या हाल था, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की बेसत के साथ इसका कुरान में भी खास तौर पे जिक्र किया है कि वइन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े हुए। उसके बारे में हमने कुछ बातें अर्ज की और फिर उसके बाद वो मुबशरात और वो मुअश्शरात, मुअश्शरात का माना यानी वो इशारात, मुबशरात का माना होता है किसी चीज के बारे में खुशखबरियां। तो ये मैंने सीरत के पहलू से पहले अर्ज किया था कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद एक इत्तेफाक है, बल्कि ये बिल्कुल अगर आदमी बड़े तअम्मुल से, गौर से, फिक्र से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हर पहलू पे नजर डाले तो समझ आता है कि खालिक कायनात ने ये सारा इंतजाम, ये सारी बिसात जो है ये इसीलिए बिछाई गई। ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक ऐसा हो जाए, यानी आप किसी भी पहलू पे नजर डालें। यही मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक रूम और एक फारस, लेकिन ये सरजमीन हिजाज एक जमीन थी जिस पे दोनों सुपर पावर का कंट्रोल नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला का इस खित्ते को मंतखब करना हुजूर की विलादत के लिए, तो इसमें आखिर कोई बात तो ऐसी थी कि दो ताकतें एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक मावरा नहर तुर्कमेनिस्तान की तरफ और एक अल्बानिया से लेकर हबशा से लेकर यहां तक ये दोनों ताकतें

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का तीसरा हलका समाअत फरमाएं।
2: फौरन क्योंकि हजूर ने आके कहना था ला किसरा वला कैसरा बादल, तो ये सारे इंतजाम जो किए जा रहे हैं कि कहीं किंगरे गिर रहे हैं और रोशनी आती है तो रोशनी से सीधा सूर्य शाम शाम के महल दिखाए जाते हैं, क्योंकि मेरे मदनी की इब्तदा मक्का से थी, महजर मदीना था और इंतहा शाम थी। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कहां से हुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा कहां से हुआ, मक्का से शाम बैतुल मक़दस, और यौमे माशर कहां कायम होगा, शाम बैतुल मक़दस, तो लिहाजा इब्तदा थी और यहां से नूर के साथ आपका इंतहा भी दिखा दी गई कि मदनी का मौलद मक्का होगा और महजर जो है वो तैबा होगा और मुंतहा जो है वो शाम होगा, बैतुल मक़दस होगा। अच्छा, और खुदा की शान देखें, ईसा इब्ने मरियम भी तस्दीक के लिए कहां उतरेंगे, वही शाम। तो अब जनाब बीबी आमिना फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम रहमत दो जहां, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो फरमाती हैं ये तमाम दुनिया के बच्चों से एक अलहदी वजह पे पैदा हुए कि बाकायदा मुअर्रखीन ने लिखा है कि आप जब पैदा हुए तो आपके दोनों हाथ जमीन पे थे और ऐसे महसूस होता था कि सजदा कर रहे हैं अपने अल्लाह को, और उसके बाद ऐसे उंगली उठाई और आसमानों की तरफ देखा। ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक पैदा होने वाला बच्चा यूं करे। बाज़ उलमा ने तो हजूर का कलाम भी नकल किया है कि जैसे महद में ईसा अलैहि सलाम ने कलाम किया, इसी तरीके से यानी गोद में उस माश्ता के बेटे ने कलाम किया, असाबे उहदूद के वाकये में बाकायदा एक बच्चे ने कलाम किया, मूसा अलैहि सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया, यूसुफ अलैहि सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया। तो बाज़ उलमा ने नकल किया है कि हजूर ने भी कलाम किया, और बाद में इतना लिखा है कि पहला कलाम ही ये था अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन व असी। और सीरत पाक के इस पहलू पे देखेंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाती हैं कि वुलिदा मख्तूनन व मसरूरा, कि हजूर जब पैदा हुए तो खतना हो चुका था और हुजूर जब पैदा हुए तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, मसरूर है, खुशी है। अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी गई, क्योंकि हुजूर की पैदाइश से 6 महीने पहले ही आपके वालिद अब्दुल्ला तो फौत हो गए। अब खुदा की शान देखें कि वालिद यूं फौत हो गए, फिर